0: इत्मुक्चियात् तमाकुसल तमंपनुन आतुलोतुं अब तेरस्कुमुं विना ओना मख्तुका कानम चिलोने वातुं चुंचक तुमको कान को थोलो वात खुल चेक तो अपन उपको का Kecil ni cekut. Itu mukjizat yang pernah mereka
1: no nashon
0: kasudun they call them wild chamomile.
1: Cauka
0: wild chamomile.
1: Kuang kuda atsahon kpitoput.
0: Gangang clutching round little piece.
1: Yeah.